उसने सात आसमान ऊपर तले बनाए, ऐ देखने वाले क्या तू खुदाए रहमान की आफरिनिश में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है?

0: उस दिन ये कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे शिकारी शिकार के जाल की तरफ दौड़ते हैं।
1: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ
0: उनकी आंखें झुक रही होंगी और जिल्लत उन पर छा रही होगी, यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था।
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बचाव में लग गए। वो रोते जाते और कहते जाते, क्या तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इसके बाद वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को छोड़कर पलट गए। सामईन, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के दौरान आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वक्फे के बाद हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगु का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ UCP की दुनिया FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद।
2: वक्फे पर जाने से पहले हम कुरैश की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की तजवीज़ का जायज़ा ले रहे थे। अपने इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत में मज़ीद तफसील है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये चीख पहुँची कि अपने साथी को बचाओ। वो झट हमारे पास से निकले। इनके सर पर चार चोटियाँ थी। वो ये कहते हुए गए कि तुम लोग एक आदमी को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। मुशरिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर पर पल पड़े। वो वापस आए तो हालत ये थी कि हम इनकी

0: चोटियों का जो बाल भी छूते थे वो हमारी चुटकी के साथ चला आता था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम। मक्का की फिजा जुल्म और जोर की इन स्याह बादलों में गंभीर थी कि अचानक एक बिजली चमकी और मखहूरों का रास्ता रोशन हो गया, यानी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने का वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अखीर का है और अगलब ये है कि वो माह जिलहज में मुसलमान हुए थे। इनके इस्लाम लाने का सबब यह है कि एक रोज अबू जहल कोहे सफा के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आपको ईजा पहुंचाई और सख्त सुस्त कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ भी ना कहा, लेकिन इसके बाद इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सर पर एक पत्थर दे मारा जिससे ऐसी चोट आई कि खून बह निकला। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्लाह बिन जुदान की एक लोंडी कोहे सफा पर वाके अपने मकान से ये सारा मंजर देख रही थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कमान हमाइल की ये शिकार से वापस तशरीफ लाए तो इसने इनसे अबू जहल की सारी हरकत कह सुनाई। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से से भड़क उठे। ये कुरैश के सबसे ताकतवर और मजबूत जवान थे। माजरा सुनकर कहीं एक लम्हा रुके बगैर दौड़ते हुए और ये तहैया किए हुए आए कि जूं ही अबू जहल का सामना होगा इसकी मुरम्मत कर देंगे। चुनाचे मस्जिद हराम में दाखिल होकर सीधे इसके सर पर जा खड़े हुए और बोले, ओ सरीन पर खुशबू लगाने वाले, ए बुजदिल, तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं भी इसी के दीन पर हूँ। इसके बाद कमान से इस जोर की मार मारी कि इसके सर पर बदतरीन किस्म का जख्म आ गया। इस पर अबू जहल के कबीले बनू मखजूम और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले बनू हाशिम के लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, लेकिन अबू जहल ने यह कहकर इन्हें खामोश कर दिया कि अबू अमारा को जाने दो, मैंने वाकई इसके भतीजे को बहुत बुरी गाली दी थी। इब्तदान हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम महज इस हमियत के तौर पर था कि इनके अजीज की तोहीन क्यों की गई, लेकिन फिर अल्लाह ने इनका सीना खोल दिया और इन्होंने इस्लाम का कड़ा मजबूती से थाम लिया और मुसलमानों ने इनकी वजह से बड़ी इज्जत और कुव्वत महसूस की। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम। जुल्म तुग़यान के स्याह बादलों की इस गमगीर फिजा में एक और बरके ताबा का जलवा नमूदार हुआ जिसकी चमक पहले से ज्यादा खैराकुन थी, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने का वाकया सुनन नबी का है। वो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिर्फ 3 दिन बाद मुसलमान हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। चुनाचे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने उमर से रवायत की है और इसे सही भी करार दिया है। इसी तरह तिब्रानी ने हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज्यादा महबूब है इसके जरिए से इस्लाम को कुव्वत पहुँचा। अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमाई और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। अल्लाह के नज़दीक इन दोनों में ज्यादा महबूब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से मुतालिक जुमला रवायत पर मजमूई नजर डालने से वाज़े होता है कि इनके दिल में इस्लाम रफ्ता रफ्ता जागुजी हुआ। मुनासिब मालूम होता है कि इन रवायात का खुलासा पेश करने से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मजाज और जज्बात व एहसासात की तरफ भी मुख्तसरन इशारा कर दिया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तुंद मजाजी और सख्त हुई के लिए मशहूर थे। मुसलमानों ने तवील अरसे तक इनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ झेली थी। ऐसा मालूम होता है कि इनमें मुतजाद किस्म के जज्बात बाहम दस्तो गिरेबां थे। चुनाचे एक तरफ वो अबाओ अजदाद की इजाद करदा रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे और बला नोशी और लहू लाभ के दिलदादा थे, लेकिन दूसरी तरफ وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے، اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کیسی تھی کہ ابھی بڑھ کے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ ما جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، وہ حرم تشریف لے آئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آبا و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مقصد پر غالب رہا، اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگردہ رہے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث اپنے اس سلسلے کو مزید آگے ہم اگلی نشست میں بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: जी वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ सामईन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। और जैसा कि आप पहले से जानते हैं, हम FOST के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं और आज हमारे साथ जो दो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर सबा कबीर और मिस इकरा जमील, उनसे बारी बारी हम सवाल कर रहे हैं और आपको यकीनन पसंद आ रहा होगा। ये जो नॉलेज हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ये आप ही के फ़ायदे के लिए, बगैर किसी तवक्कुफ़ के हम बढ़ते हैं डॉक्टर सबा कबीर की तरफ। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आपका जो MLT का प्रोग्राम है, मैं तो इतना इस बारे में आगाही नहीं रखता, लेकिन मुझे यकीन है क्योंकि आप खुद बता रही हैं कि इट इज़ बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स, तो आप ही का डिपार्टमेंट, UCP का डिपार्टमेंट MLT क्यों, वाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज़, ऐसी क्या खासियत है आपके प्रोग्राम में?
2: जी एक्चुअली सर, इसकी कुछ बहुत मेन रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे जो डिग्री है, इट इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। हमने हमारा जो ये प्रोग्राम है, इट इज़ रजिस्टर्ड एंड एफिलिएटेड विद द अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल। एक वेरीफाइड प्रोग्राम हमने इस वक्त स्टार्ट करवाया हुआ है जो कि रजिस्टर्ड है। दूसरा, हमारे पास जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है दैट कवर्स बोथ थ्रेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स इन की एरियाज। हमारे पास जो लैब्स हैं, दीज आर द स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स विद ए मॉडर्न फैसिलिटीज, जिसमें हमारे पास वी हैव ए वेरी वेल मेंटेन्ड लैब्स विद एडिक्वेट स्पेस फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। हमारे पास जो फैकल्टी है, इट इज़ वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। और हमारे पास जो है डिफरेंट इंटर्नशिप एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। वी हैव कोलैबोरेशंस विद डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूस रिसर्च डेवलपमेंट है। हमारे पास वी हैव अ कल्चर इन UCP दैट इनकरेजेस फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स टू इंगेज इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू एडवांसिंग मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। फिर हमारे पास इंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारे पास तकलीक सेंटर है जहाँ पे बच्चों को जो भी उनके आइडियाज होती हैं, जो भी उनकी थिंकिंग होती है, उसको वो इंटरप्रेन्योरशिप तक लेकर जाते हैं और उसकी पूरी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास, हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। बच्चों को डिफरेंट टीम वर्क के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी टीम बिल्डिंग की जाती है, करेक्टर बिल्डिंग करवाई जाती है। और हमारे पास स्टूडेंट स्पोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हर तरह की एकेडमिक काउंसलिंग, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड किया जाता है टू द रियल वर्ल्ड और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इसी सवाल को लेके मैं मिस इकरा आपकी तरफ बढ़ूंगा, आप बताइए।
3: सर, MLT इटसेल्फ जो है वो इतनी ज़्यादा वेल नॉन हो रही है, इतनी ज़्यादा उसकी पीक पे जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। स्टूडेंट्स जैसे इस डिग्री में आते हैं, विद इन सेमेस्टर, आफ्टर 2 semesters और मैक्सिमम आफ्टर 4 semesters, दे आर एबल टू गेट अ जॉब। मे बी इट्स लाइक अ फ्लेबॉटमिस्ट, इट्स लाइक अ लैब टेक्नीशियन और इट्स लाइक अ रिसर्च लैब असिस्टेंट लाइक। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि सर, UCP इटसेल्फ इतनी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, उनके लिए एक डिटेल्ड करिकुलम के आ रहा है एंड उनकी जो फैकल्टी है वो इतनी ट्रेंड है, स्टूडेंट्स को इतने डिसेंट वे में और एक एजुकेशनल वे में उन्हें गाइड किया जाता है कि उनके लिए आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उनके लिए इट सेल्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं ताकि स्टूडेंट जो हैं वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप आउट कर सकें।
1: मैं एक और सवाल ज़िमनी यहाँ से पूछना चाहूँगा, पहले डॉक्टर साहब आपसे, कि क्या आपको इस अपने प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए कि क्या कोई एग्जीबिशन भी करते हैं, कोई आप लोग यहाँ कोई कॉम्पिटिशन भी करवाते हैं?
2: बिल्कुल सर, हमारे पास डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन्स भी हैं और डिफरेंट तरह के फेस्टिवल्स भी यहाँ पे अरेंज किए जाते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक साइंस फेस्टिवल यहाँ पे लगाया जाता है, हर साल होता है, डिफरेंट फैकल्टीज के साथ होता है, जिसमें एक्सटर्नल्स भी इनवाइटेड होते हैं। बच्चे अपने मॉडल्स, अपने जो डिफरेंट जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं उनको वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं और अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम बच्चों को आउटसाइड द UCP डिफरेंट सेंटर्स के अंदर और डिफरेंट फेस्टिवल्स के अंदर लेकर जाते हैं ताकि उनके एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े।
3: सर, इसे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी डॉक्टर साहब की बात को। इसमें हमारे एक बहुत एक इवेंट होता है जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स पोस्टर कंपटीशन है। उसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दे प्रेजेंट देयर आइडियाज़, दे प्रेजेंट देयर सॉफ्टवेयर्स देयर एंड इसी कंटेक्स्ट में हम अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट्स विजिट कराते हैं। उसमें जो सम हाउ एक बहुत कॉमन हमारा एक इवेंट था, वो था हमारा इस्लामाबाद में, जिसमें हम स्टूडेंट्स को लेके गए थे MLTAP के इवेंट में, जो कि एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एसोसिएशन है पाकिस्तान की, एंड आर स्टूडेंट्स सिक्योर थर्ड पोजीशन इन दर पोस्टर कंपटीशन एंड बिसाइड्स दिस दे आल्सो अटेंड द फर्स्ट अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल दैट वाज प्रोफेशनल कन्वेंशन दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एमएलकॉन. तो स्टूडेंट्स हमारे इस्लामाबाद भी गए थे, दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड देयर एंड एज वेल एज विन देयर पोस्टर कॉम्पिटिशन एंड देयर क्विजेज एज वेल.
2: अच्छा सर, एक और चीज जो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, जब हम बच्चों का एक्सपोजर करवाते हैं इन चीजों के साथ, तो बच्चे ऑब्वियसली बहुत सारे एक न्यू आइडियाज और लेकर भी आ रहे होते हैं. तो वहां पे हमारे बच्चों ने कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए थे बायोसेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, कि बच्चों ने हम ये देखा कि किस तरह से हम जो ये लैब कोट्स हैं जो हम डेली बेसिस पर लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये कंटामिनेट हो जाती है. उन कंटामिनेटेड क्लोथ्स को जब हम अपने घर पे लेके जाते हैं तो उनकी वॉशिंग हो रही है विद नॉर्मल डेली क्लोथ्स, तो वो भी कंटामिनेट हो सकते हैं. तो उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया कि किस तरह से हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं विद इन अ लैब, ताकि जब आप उसको घर पे लेके जाएं तो वो कंटामिनेट ना हो. और वो बड़ा अच्छा किस्म का उन्होंने बनाया और जिसको बहुत सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया. और एक वो एक न्यू चीज़ थी, एक न्यू आइडिया था जो अभी तक हमें कहीं और पे नज़र नहीं आया था, और अब हम उसको पेटेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो इसी तरह से बच्चों ने कुछ माइक्रोस्कोप्स बनाई हैं विद डिफरेंट आइडिया के साथ कि किस तरह से उसमें डिफरेंट सेल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है. तो ये हमारे पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों की तरफ आई हैं, और इन बच्चों को हम पेटेंट की तरफ भी लेकर जा रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लेकर जा रहे हैं.
1: जी मिस सिकरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इनके अलावा आपने क्या कोई ऐसे एक्टिविटीज़ हैं या आपके पास ऐसे कोई डायनामिक्स हैं जिससे आप बच्चों के रुझान को MLT UCP में आने को परवान चढ़ा सकें?
3: सर, इसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास हम बहुत सारे इस तरह से ओरिएंटेशंस रखते हैं, हम कुछ सेमिनार्स अरेंज करते हैं, हम कुछ कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करते हैं, जिसमें कुछ टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेज की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली हमने अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेमिनार ऑर्गेनाइज किया. देन वी ऑल्सो हैव एन एंटीबायोटिक अवेयरनेस सेमिनार बिकॉज ऑफ द टॉप इशू ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड. देन जब हमारी फर्स्ट एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है वो फॉर्म्ड हुई है, जब वो ऑफिशियली जो है डिक्लेयर की गई है, तो वी ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट ऑन द गुड लैब प्रैक्टिसेस क्वालिटी एश्योरेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल. इसके अलावा सर, हमने एक स्टूडेंट्स की लैब्स के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट को इन्हांस करने के लिए एक ट्रेनिंग करवाई थी बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन, जिसमें हमारे पास जो सर्टिफाइड बायोसिक्योरिटी के मेंबर्स थे वो आए थे, और उन्होंने स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप थ्रू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग गाइड किया था कि किस तरह से हमें अपनी आपको प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. मीनवाइल फिर हम साथ में बच्चों को विजिट्स करवाते हैं, हमने स्टूडेंट्स को डिफरेंट लैब्स विजिट करवाई हैं, हॉस्पिटल्स विजिट करवाए हैं, जैसे कि चुगताई लैब है, इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है. देन वी विजिट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज. रिसेंटली आर स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विजिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज. तो ये सारे विजिट्स जो होते हैं, दे स्टूडेंट्स को एक प्रोफेशनल एक्सपोजर देते हैं, दे नो द रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज, दे नो एक्चुअली हाउ द लैब वर्क.
1: हम चलते हैं एक और वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 UCP की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद नो. आज हम गुफ्तगू कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस क्या है, खुद की आगाही क्या है और वो कौन से टूल्स हैं जो हमें मदद करते हैं अपनी ज़ात को पहचानने के बारे में और अपने आप को पहचानने के बारे में कि क्यों हम पॉजिटिव सोचते हैं या क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं या हम जो जज्बात दुनिया के सामने रखते हैं उनके पीछे की वजह क्या है, क्यों हमारे अंदर ये जज्बात बचपन से हैं. तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि वो टूल्स कौन से हैं. तो ज़ाहिरी तौर पे अगर आप अपनी ज़ात को पहचानना चाहते हैं तो मैंने जो इस प्रोग्राम के बारे में रिसर्च की और मैं हैरान कन हूँ इस बात पे कि जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको अपनी ज़ात के बारे में बता सकती है वो आपकी पर्सनल डायरी है. तो यकीन माने अगर आप अभी तक पर्सनल डायरी नहीं है आपके पास और आप अपनी ज़ात के बारे में नहीं लिखते कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपके जज्बात कैसे थे पूरे दिन, आपने कैसे इंटरेक्ट किया लोगों से और आप कैसा सोच रहे हैं दूसरों के बारे में, अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करते डेली बेसिस पे तो यकीन माने आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं. राइटर्स कहते हैं, अरस्तू ने कहा था कि ये आपकी खुद आगाही सबसे पहले आपको अपनी ज़ात के बारे में हर शाम को बैठ के सोचना चाहिए कि आप क्या हो. तो ये आज के मॉडर्न एरा में उसको हम पर्सनल डायरी कह सकते हैं कि हमें पर्सनल डायरी क्यों बनानी चाहिए, क्यों कि आज मुझे फिक्र किस बात पर हुआ, मतलब मुझे किस बात का डर था, किस बात की फिक्र थी, क्यों आज मैंने ये सोचा. अगर मैंने किसी इंसान किसी शख्स के बारे में कुछ सोचा है तो वो मैंने क्यों सोचा. आज के इस तवील रेडियो प्रोग्राम में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हम एक दिन गुजारते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, हम अगर स्कूल के तालिब इल्म हैं, कॉलेज के तालिब इल्म हैं, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं या हम ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, किसी भी तबके फ़िक्र से हैं, हम किसी भी प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ लाइफ से हैं, तो हम वहाँ पर वैसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं जैसा हम हमारी ज़ात के अंदर फिक्स्ड हुआ है, हम उसको क्यों नहीं बदल सकते, क्यों हम अपने इमोशंस को ताबे लाते हुए हर फैसले को करते हैं, हम हर फैसले को अपने दिमाग के मुताबिक क्यों नहीं करते, अपने जज्बात को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते. सो इसी हवाले से हम इस आज की इस नशिस्त में बात करेंगे. सो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में कि डायरी जो है वो हमें ये बताती है कि आज के दिन में मैंने मेरी ज़ात ने क्या गलत किया है और आज के दिन में माजी से क्या मैंने मुख्तलिफ किया है, क्या ऐसा मैंने किया है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए जो मेरी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर कर सकता है. अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, अपने एहसास को इस चीज़ पर जज करें कि क्या चीज़ है जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है. सो आज के इस रेडियो प्रोग्राम में हम इस चीज़ पे गौर करेंगे कि ये डायरी लिखना क्यों ज़रूरी है. देखिए डायरी वो वाहिद चीज़ है जो आपको आपकी अपनी परसेप्शन एक दिन में 24 घंटे में बता देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इशा के बाद बैठ के मैं अपनी पर्सनल डायरी लिखता हूँ तो मैं ये जानूँगा कि मैंने आज के पूरे दिन में रेडियो में जो वक्त गुजारा वहाँ मैंने कैसा वक्त गुजारा, वहाँ मैंने लोगों से जो ट्रीट किया कैसा ट्रीट किया, मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने प्रोडक्शन ट्रैक्स में या किसी चैनल में अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करने गया हूँ तो वहाँ जब मैंने कम्युनिकेट किया अपने सीनियर्स के साथ तो मैंने कैसा कम्युनिकेट किया, मैं उनके बारे में क्या जज कर रहा था, क्या परसीव कर रहा था, या मैं यूनिवर्सिटी में क्लास लेने गया तो वहाँ पर मैंने क्या चीज़ समझी, जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया क्या चीज़ गलत मेरी इंटरेक्शन थी. सो डायरी वो वाहिद चीज़ है जो आपको ये चीज़ सिखाती है कि आपने पूरे दिन में क्या ठीक क्या गलत किया, किन जज्बात को आप कंट्रोल ना कर पाए, किन ख्यालात को आपको और ज़्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए था. सो आज के इस रेडियो प्रोग्राम में खुद आगाही के इस सिलसिले में हम ये जानेंगे कि हमारा अपनी ज़ात को पहचानने के बाद उसको बेहतरी की तरफ कैसे ला सकते हैं और बेहतरी की तरफ लाना कितना ज़रूरी है. सो अगर हम बात करें कि इसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं अपनी ज़ात को पहचानने के बारे में, वो है जी दूसरों से फीडबैक लेना. ये नहायत ज़रूरी है कि आप दूसरों से अपनी ज़ात के बारे में फीडबैक लें. आप इस चीज़ का फीडबैक लें कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए रॉन्ग है, और आप दूसरों से आप अपने ग्रुप में, अपने फैलोज में ऐसे सवालात कर सकते हैं। और मैं मुझे सही माजी में याद है कि माजी में मैं खुद इन चीज़ों के बारे में जज करता था। मैं अपने दोस्तों को कहता था, जब भी हमारा गेट टुगेदर होता था स्कूल फ्रेंड्स का या कॉलेज फ्रेंड्स का, तो वो दोस्त होते हैं जो आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानते होते हैं। तो मैं उनको कहा करता था कि आप मुझे मेरी 3 अच्छी आदत बताएं और 3 बुरी आदत बताएं। मेरे बारे में आप बताएं कि आपने माजी में 10 साल स्कूल में मेरे साथ गुजारे, कौन से ऐसी 3 अच्छी आदत थी जो आपको इंस्पायर की, जिनसे आप मोटिवेट हुए, या कोई भी ऐसी कौन सी 3 बुरी आदत थी जिन्होंने आपकी ज़ात आपको किया कि यार शायद यहाँ अली गलत कर रहा है। और यकीन माने वो जो दोस्त होते हैं स्कूल लाइफ के, वही आपको सबसे बेहतर बता सकते हैं। सो अपने आप को जज करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है जो आप सेल्फ अवेयरनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कि दूसरों से फीडबैक लेना स्टार्ट करें। दूसरों से पूछें कि यार आपको क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ। ये इन सोसाइटी बड़ा स्ट्रेंज चीज़ लगती है कि कैसे आप किसी से पूछें, लेकिन आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, आपका एक कंफर्ट जोन होता है, उस कंफर्ट जोन में आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यकीनन जब आप अपने दोस्त के पास बैठेंगे, उससे पूछेंगे, और आपको वो बेहतर तरीके से जानता होगा, वो आपको बता सकता है कि आप में क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ दुरुस्त है, और किन चीज़ों पर, किन एरियाज ऑफ लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। सो जब आप बैठेंगे अपने दोस्तों के पास, वो आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। पहली चीज़ हमारे पास क्या आई कि हमें डायरी लिखनी चाहिए रोज़ की रूटीन में। हम वो चीज़ हमें बताएगी कि हमारी ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ बेहतर है। और दूसरी चीज़ है कि दूसरों से फीडबैक लेना, दूसरों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए, आम हर इंसान के लिए, कि वो खुद जहन साजी करे, वो इस चीज़ के ख्यालात को प्लान करे, लाइन अप करे, एक रोड मैप रेडी करे कि मैंने किन चीज़ों को किस तरह से ज़िंदगी में लेके चलना है। ये तो इस्लाम में भी है कि जब आप इशा के बाद कुछ वक्त के लिए बैठें तो ज़रूर अपने दिन के बारे में सोचें कि क्या बेहतर आपने किया, किन चीज़ों में आप और ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। आप रोज़ाना अगर चंद मिनट ही आप अपने स्लीपिंग बेड पे जब सोने जाते हैं, लेटते हैं, और आजकल तो कुछ ऐसी रूटीन ऑफ लाइफ है हमारी कि हम मोबाइल से या डिजिटल गैजेट से ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम सोने से पहले भी 3-4 घंटे हम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं, और हमारे ख्यालात सैचुरेटेड होते रहते हैं, हमारे ख्यालात बिखरे रहते हैं, हम उनको सम अप नहीं कर पाते। हर शाम को हम उन्हीं सैचुरेटेड ख्यालात के साथ, हम उन्हीं ख्यालात के साथ अचानक सो जाते हैं और पता ही नहीं चलता, सुबह एक बेमायनी दिन का आगाज़ कर देते हैं। सो जहन साजी बेहद ज़रूरी है रोज़ाना की नौयत पे। अगर आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त, अगर शाम के वक्त भी है तो अपने स्लीपिंग बेड पे अपना मोबाइल एक साइड पे अगर आप रख के ये चीज़ सोचें कि आज मैंने इस दिन में क्या खोया, क्या पाया, क्या मेरे ख्वाब थे उनके लिए कितनी मैंने स्ट्रगल की, या आज के दिन के लिए अपने ख्वाब के बारे में क्या मैं एफर्ट पुट कर सका, क्या बेहतर, क्या अच्छा, क्या बुरा मैंने किया, क्या खोया, क्या पाया, इस चीज़ को पहचानना बेहद ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप इस चीज़ की मुहिम का करें आगाज़, कि अगर आप मौजूद हों दिन के वक्त में, अगर आप ये करना चाहें तो बेहतरीन एक वक्त है कि सुबह फजर की नमाज के बाद अगर आप बैठें, सूरज की किरणें आप सुबह की देखें, और सुबह का वो समा जो होता है वो तो एक नई किरण उजागर करता है आपकी ज़ात में, आपको बताता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। अगर आप मेरे से मशवरा लें तो मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी 9th-10th की लाइफ में गांव में सुबह, क्योंकि मुझे मेरा थोड़ा मिलिट्री की तरफ ज़्यादा डिक्लाइंड था, मैं हमेशा से चाहता था कि मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना है, सो उसी हवाले से मैं हमेशा रेडी रहता था उन चीज़ों के बारे में। सो मैं सुबह उठ के जॉगिंग पे जाता था डेली। सो मैंने वो जो एक नहर के किनारे बैठ के सुबह की किरण देखनी, और सुबह सामने हमारे सरगोधा में माल्टे के बागात होते हैं, वहाँ पे माल्टे के बागात होने और एक स्पेसिफिक माल्टे की खुशबू होती है, वो खुशबू आ रही होनी, वहाँ बैठ के जो ख्वाब सोचे थे, यकीन माने आज भी मैं अल्लाह की ज़ात का नहायत शुक्र गुजार हूँ कि उसकी ज़ात ने उन ख्वाबों पर पुख्तगी उस वक्त में दी। उस वक्त में वो पुख्तगी मिली तो आज मैं ज़िंदगी में आगे उन ख्वाबों को लेके चल रहा हूँ। सो सुबह का वक्त मैं समझता हूँ सबसे अच्छा वक्त है कि आप माइंडफुलनेस कर सकें, आप जहन साजी कर सकें, आप इस चीज़ का मरकबा पैदा कर सकें कि आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। उसी के साथ साथ अगर हम अपने इस मौजू की टेक्निकल चीज़ों की तरफ चलें या हम अपने इस मौजू के आप रिसर्च की तरफ चलें, तो हमारे पास डिफरेंट मेडिकल टेस्ट भी हैं, हम उन्हीं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास असेसमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं अपनी ज़ात को। आप सिंपली एक ऑनलाइन फॉर्म होगा, उसे फिल करें, आप सबमिट करेंगे, लास्ट में आपको रिजल्ट आ जाएगा। सो इसकी डिटेल्स हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद, और उसके बाद हम अपनी अमली ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे, खुद आगाही हमें कैसे अमली ज़िंदगी में हमारी मदद करती है। तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक टू FM 92.6 UCP की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद नौ, जिसमें हम बात कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, खुद आगाही के बारे में। तो अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें कि ऐसे कौन से मेडिकल स्नैरियोज होते हैं जिनमें हम अपनी साथ के बारे में जान सकते हैं, तो बेसिकली MBTI एक टेस्ट नेम है। अगर हम इस टेस्ट को करवाएं तो हमें पता चल सकता है, साइकोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि क्या परसेप्शन है आपकी, क्या चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में इम्पावर हैं, क्या चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में डाउन पावर हैं और आप उनको इम्पावर कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है बिग फाइव के नेम से, आप इसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। और उसी के साथ साथ अगर आप पेंटिंग बनाने का शौक़ रखते हैं, अगर आप पेंटिंग्स बनाएं तो पेंटिंग्स बना के आप उसको AI के डिफरेंट पिक्चर कैप्चरिंग टूल्स होते हैं उनसे मदद लेके आप पहचान सकते हैं कि आपकी पेंटिंग में क्या परसेप्शन निकल रही है। या बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आए, अगर AI को आप कहें कि आप इस चीज़ को जज करो कि मेरी पेंटिंग से क्या चीज़ परसीव हो रही है, तो आपको वो कंप्लीट परसेप्शन दे सकता है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि खुद आगाही की अमली ज़िंदगी में क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी के बारे में। अगर हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं चीज़ों को, हम प्रैक्टिकल करते हैं ज़िंदगी को, तो क्यों खुद आगाही ज़रूरी है। देखें, अगर आप खुद के बारे में अवेयर्ड हैं तो सबसे पहले आपको एक बड़ी पावर मिल जाएगी कि आपके बेहतर ताल्लुकात बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी इस बारे में बात की थी कि एक लीडर और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है। सिर्फ ख्यालात का फ़र्क होता है, सिर्फ जज्बात का फ़र्क होता है, सिर्फ उसके इनिशिएटिव पावर का फ़र्क होता है। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, शायद आप वक्त लें उसको सोचने में, लेकिन एक लीडर उसको फ़ौरन अवेल करेगा। एक लीडर हमेशा प्लान्ड होता है, एक लीडर हमेशा मिशन ओरिएंटेड होता है। सो जो खुद की आगाही है, यकीनन यह आपको लीडरशिप की तरफ भी लेके जाती है, आपको बताती है कि क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। सो अगर हम देखें कि खुद आगाही हमारे ताल्लुकात को कितना बेहतर करती है, तो आप यकीन मानें कि अगर आप अपनी ज़ात के बारे में श्योर हैं और आपको पता है कि ये बात इस मौके मुनासबत पे मैंने नहीं करनी, या ये बात इस मौके मुनासबत पे अगर मैंने कर दी तो उसका क्या असर होगा, अगर आप मौके मुनासबत को जज करना जानते हैं कि इस मौके मुनासबत पे मैंने ये बात की है और ये असर रखती है और ये नहीं असर रखती, तो ये चीज़ आपके ताल्लुकात को बेहद बेहतर कर सकती है। जब आपके बेहतर ताल्लुकात होंगे, इनडायरेक्टली आप लीडर हैं। एक लीडर हमेशा अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तों में बेहतर तरीके से इम्पार्ट होता है। वो बेहतर तरीके से जानता है कि मेरी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें बेहतर हैं और ये जज्बात, ये ख्यालात, ये एहसास मैंने इन तबका फ़िक्र लोगों तक रखने हैं या नहीं रखने। सो वो अपनी ज़ात के बारे में बड़ा अश्योर होता है। सो इसी हवाले से अगर हम देखें कि इसके बाद, बेहतर ताल्लुकात के बाद हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा है, तो हमें पता चलता है कि हम पेशा वाराना तरक्की हमारी ज़िंदगी में आती है, कि हम पेशा वाराना तरक्की, हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है या हमारा जो, हमारे जो आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल योनरा है, प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल एरिया है, उसमें हम बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने शौक और अपनी ताकत के मुताबिक करियर चुनते हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपने जज्बात और अपने तबके फ़िक्र के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को परसीव करते हैं। जब भी आप अपने करियर को चूज़ करने जा रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को चूज़ करने जा रहे होते हैं, तो अगर आप अपनी ज़ात के बारे में अश्योर हैं, आपको पता है कि मैं ये चीज़ें करूँगा तो उसका ये असर होगा, मेरे मूड्स इन बातों पे स्विंग्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ज़ात के बारे में इस चीज़ पे अश्योर अगर 9th-10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं था कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मैं अच्छी बातचीत, अच्छी गुफ्तगू कर लेता हूँ, तो क्या मैं मीडिया को ज्वाइन करता? बिल्कुल नहीं करता। मैं खुद के बारे में अवेयर था तो मैंने ज्वाइन किया। ठीक है। इसी तरह अगर आप खुद के बारे में सेकंड ईयर में अवेयर्ड हैं कि कौन सा प्रोफेशन ऑफ लाइफ आपको बेहतर लगता है, तो आप बिल्कुल यकीनन आप एक अच्छी डिग्री को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने शौक के मुताबिक अपनी डिग्री को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ ही आप अपनी ज़ात के बारे में श्योर नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने ज़िंदगी में करना क्या है, तो आप कभी भी अपनी सोच के मुताबिक, अपने जज्बात के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक अपनी डिग्री को कभी परस्यू नहीं कर सकते। सो थिंग इज़ दैट कि अपनी ज़ात को पहचानना, अपनी ज़ात को जानना बेहद ज़रूरी है। सो इसी हवाले से अगर हम आगे बात करते चलें कि हमारे पास क्या और पावर आती हैं प्रैक्टिकली जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस से, वो है जी हौसला मंदी। हौसला मंदी वो एक वाहिद चीज़ है जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको आता है जब आप एक जगह पे खड़े होकर एक बात करते हैं, आप अपनी ज़ात के बारे में श्योर होते हैं, तो आप उस बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने आके बैठ के आपसे इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपने सामीन से इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर्ड हूँ कि मैंने इसके बारे में तैयारी की हुई है, मैंने इस मौजू के बारे में तैयारी की हुई है। तो अगर अब मैं खुद इस चीज़ के बारे में श्योर था कि मेरी तैयारी है या नहीं है, अगर मैं नहीं है पे जाता, तो शायद ये मेरे पास कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या जिसको आप कह सकते हैं कि आपके पास हौसला मंदी की पावर ना होती। हौसला मंदी की पावर कैसे मेरे पास आई कि मैं अपनी ज़ात के बारे में आगाही थी मेरे पास, मैं अश्योर था कि हाँ मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ इस मौजू पर, मेरे पास ये पावर है। उसी के साथ साथ अगर हम अरस्तु के एक कॉल के बारे में बात करें कि अरस्तु ने क्या खूब कहा था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे हमें मदद करती है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, तो अरस्तु ने खूब कहा था, अरस्तु ने कहा था कि अपने आप को जानना ही सच्ची हिकमत का आगाज है। अपनी ज़ात को अगर आप पहचान लेते हैं तो वही एक हकीकत हिकमत है, उसी से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और इस्लाम भी हमें कहता है, इस्लाम हमारे से मैदाने महशर में जो सबसे बड़ा सवाल होना है, मैं माजी के कुछ प्रोग्राम में भी इस लाइन को डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे से अल्लाह की ज़ात ने शऊर का सवाल करना है, जो सबसे बड़ा सवाल आप समझें। तो शऊर का सवाल, अपनी ज़ात का शऊर हासिल करें, अपनी ज़ात का शऊर हासिल करें, अपने बारे में इस चीज़ का शऊर हासिल करें कि क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है। तो आपने अपने आप को अगर पहचान लिया तो वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। और एक शेर के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा और एक पैगाम देना चाहूँगा अपने तमाम सामेईन को कि ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले कर चलें। आपकी ज़ात सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूशन आपके करियर में नहीं पुट कर रही, आपके माशरे में पुट कर रही है। आपकी ज़ात आपके माशरे के लिए असर रखती है, आपकी ज़ात आपके लिए असर रखती है, और साथ ही साथ आपकी ज़ात इस चीज़ का असर रखती है कि आपने माशरे को कैसे बेहतर करना है। सो हमेशा अपनी ज़ात के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपने वालिदैन के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपनी माशरे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सोचें, अच्छा करें। जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो अवामुन्नास की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, लोगों की भलाई का सोचें, और जब माशरे में आप निकलें तो कुछ ऐसा सोचें कि पता लगे कि ये एक पढ़ा लिखा शहरी है। आप पौधे लगाएं, पता चले लोगों को कि ये इंसान मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है, ये सोच रहा है इस बारे में कि आने वाला वक्त कैसे होगा, आने वाला वक्त इसके लिए कैसे बेहतर हो सकता है, आने वाला वक्त कैसे इस इंसान के लिए बेहतरी की तरफ इसको लेके जा सकता है। अपने जज्बात को समझना, अपने ख्यालात को समझना और अपने एहसासात को समझना सबसे बड़ी खुद आगाही है, और ये ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपने ज़िंदगी को कैसे परस्यू करना है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा एक शेर के साथ कि नज़र पड़ी जो दिल पे तो राज खुला ये राज का, नज़र पड़ी जो दिल पे तो राज खुला ये राज का, कि असल जंग है अंदर की, बाहर तो सब फसाना है। इसी के साथ अपने मेहमान अली हसन को दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. हम बात कर रहे हैं जनाब फारूक रजा साहब से, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं वॉइस सोसाइटी के. फारूक भाई, इंट्रोडक्शन तो माशाल्लाह बड़ा हेल्दी रहा, बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करवाया और बैकग्राउंड भी बताया उसका, कैसे कैसे किन स्टेप से आप यहाँ तक पहुंचे. और आप क्या समझते हैं कि वॉइस सोसाइटी के सबसे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि काफी चीजों पर आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसपे मेनली फोकस है आप लोगों का वो कौन सा है?
4: जी हमाद भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. एक्चुअली सीन ये है कि ड्रामेटिक इज ऑल्सो ए गुड प्रोजेक्ट वन, जिसमें आप लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने मसाइल को, अवेयरनेस देते हैं, इंक्लूजन की तरफ जाते हैं. उसके बाद हमारा खुददारी फूड्स है, ये एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक हमारा इनिशिएटिव है. दूसरा जो तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम हमारी चीज है ना, वो कलीदी चीज है ILC. तीसरे नंबर पे जो हमारी फंडामेंटल चीज है जिसपे हमारा कोर फोकस है, वो हमारा ILC है. या ILC से मुराद इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है, और ये हमारा 10 ईयर फ्यूचर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग फिजिकल डिसेबल बच्चों को अंडर आर रूफ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी फूड और क्वालिटी मेडिकेशन की फैसिलिटीज एट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं. और इसका हमारे भाई बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि PWDs, जिन्हें मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि ये बोझ है हमारे ऊपर, और समटाइम ये कहना नहीं चाहिए, वालदेन भी इन्हें बर्डन फील करना शुरू कर देते हैं. उसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं. उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर्स सबसे फंडामेंटल है. जिसके पास पैसे होंगे वो अच्छी तरह से परवरिश कर सकेगा अपने बच्चों की, इसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. उसके बाद हमारे सोशल और माशरती रवैये आते हैं. आप यूं अज्यूम करें हमाद भाई कि हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं इस थ्रू आउट पीरियड के अंदर कि जिनके बच्चे डिसेबल है ना, लोग क्या सोचते हैं उनके मतलब. लोग सोचते हैं कि शायद इस बच्चे ने बड़े होके तौबा नौज़ुबिल्लाह कोई बुरा काम करना था, तो अल्लाह ताला ने से अभी से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया. और उनके वालदेन के मतलब भी लोग सोचते हैं, कितना ये शेम्ड चीज होती है ना कि कोई आपके पेरेंट्स के मतलब सोचे कि इसकी माँ ने या इसके बाप ने कोई बुरा किया, उसकी सजा में ये बच्चे अल्लाह ताला इनको ऐसे दे दिए. सारे हमारे मुआशरी रवैये है ना, जिनको हम रेडिकेट करना चाह रहे हैं. और इसमें एक और रवैया भी आता है कि जिसमें लोग ये समझते हैं कि हमारी औलादों पे काला जादू किया गया है, जिसकी वजह से हमारी औलादों की ये फिजिकल डिफॉर्मेशन आ गई है. तो हम लोग इससे एक स्टेप आगे सोचते हैं. देखें, टांग डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो जाए, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो आप ब्लाइंड्स आती हैं, डेफ एंड म्यूट हैं, फिजिकल ऑर्गन में कोई डिफॉर्मेलिटीज हैं, तो रिगार्डलेस दीज, अब हमारे पेरेंट्स, जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल कोट करूंगा, अपने जैसे मेरे जैसे कई डिसेबल हैं, उनकी एक ही कहानी होती है कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी सारी उम्र का कमाई भी कह लें, वो अपना टाइम कह लें, अपनी एनर्जी कह लें, और साथ साथ पूरी फैमिली के जो दीगर चाचे और जो भी रिश्तेदार होते हैं, वो सब अजीजों वकारिब ही कोशिश करते हैं किसी तरीके के साथ इस बच्चे की टांग सीधी हो जाए, या ये चलना शुरू कर दे, ये बोलना शुरू कर दे, ये देखना शुरू कर दे, ये सीखना समझना शुरू कर दे. लेकिन हम लोग ये चीज नहीं हमारे भाई सोचते, क्यों ना यार हम लोग अपना स्ट्रक्चर ऐसा यूनिफॉर्म कर लें कि एक बंदा नहीं चल सकता, तो हम लोग अपने घरों की स्टेज खत्म करें, रैंप बना लें, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा. जैसे कि हम लोग वर्क प्लेस पे हैं, वर्क प्लेस पे सबॉर्डिनेट भी क्या करेंगे, आपको गोद में उठा के ले जाएंगे, टेबल पे बैठा देंगे, ये नहीं करेंगे यार अपने दरवाजे थोड़ा से खुले कर लें, अपने वॉशरूम को थोड़ा मैनेज कर लें, अपने जो एंट्रेंस के पॉइंट हैं, जाने के जो दाखिली रास्ते और रास्ते उनको मैनेज करें, वो नहीं करना हम लोगों ने. हम लोगों ने काम वो करना जो हमें अच्छा लगता है. हमारी तशरीह क्या है इंसान के लिए, एक नॉन डिसेबल साथी जो तशरीह निकालता है, वो तशरीह ये निकालता है, दो आंखें, दो कान, दो बाजू, दो टांग, ठीक ने ए बंदा भी, बाकी कोई बंदा नहीं हैगा. यानी कि इस तरह का है एक हमारा मुआशरती रवैया है. मैं ये समझता हूँ हमाद कि हम लोग शायद इंसानी तरक्की के उस शोर के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, जहाँ पे हम लोग अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज और इस तरह के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, जैसे हम लोग डिसेबल लोग हैं और जैसे खवातीन हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हमारे साथी हैं, उनको फैसिलिटेट कर सके. फैसिलिटेट तो करना दूर की बात है, उन्हें एटलीस्ट ह्यूमन बींग ही समझ सके. हमारे ये सोसाइटी का, बेशक हम लोग मुसलमान है अल्लाह का शुक्र है, तो लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट के हमें काफी सारे मुआशरती रवैयों का सामना है, और ग्रेजुअली चीजें बेहतर हो रही हैं. होपलेस होना एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मायूसकुन बात है. आप फुल ऑफ होप रहे हैं, चीजें दिन ब दिन ग्रेजुअली बेहतर होंगी. देखिए 70 साल होंगे हमारे मुल्क आजाद हुए, तो इसमें 70 सालों में कभी कौमें इतनी जल्दी नहीं बनती है ना. स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप कंटिन्यूस एफर्ट करें. हम लोग आवाज उठा रहे हैं, यूसीपी का अगेन थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है। नोक नोक करते रहेंगे ना आप, दरवाजा खटखटाते रहेंगे, कहीं ना कहीं दरवाजा खुलेगा, आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी एबिलिटीज को रिकग्नाइज किया जाएगा, आपके राइट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको भी मुआशरे का उतना ही अहम फर्ज समझा जाएगा जितना कि एक नॉन डिसेबल साथी होता है। तो ये एक हमारी एक नजरियाती जंग भी समझ लें, एक फंडामेंटल जंग भी समझ लें जो सोसाइटी के साथ है, और ये तभी हम जीतेंगे जब सोसाइटी के हमारे नॉन डिसेबल साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लोग अपनी ही चादर की दीवार चार दीवारी में बैठे रहेंगे ना तो दूसरे लोग हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो इस तवज्जो से मैं अपने जितने भी सामीन हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज़, उनको ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि नॉन डिसेबल साथी हों, मार्जिनलाइज वूमेंस हों, माइनॉरिटीज़ हों या ट्रांसजेंडर साथी हों, इन्हें इंसान समझना शुरू कर दें, हमारे काफ़ी सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे।
3: जी बिल्कुल फारूक भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे माइंड्स उतने कहना चाहिए कि खुले हुए नहीं हैं और बहुत नैरो माइंड से हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में। हम अक्सर अवकात ये देख रहे होते हैं कि नज़र आ रहा होता है कि लोगों का एटीट्यूड इस तरह से होता है कि अपने से डिफरेंट कोई भी है, चाहे वो किसी भी हवाले से डिफरेंट है, चाहे वो जेंडर के हवाले से डिफरेंट है, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से डिफरेंट है, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। हमारे यहाँ ये माशरे का एक बड़ा अलमिया है। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पहले से काफ़ी एक्सेप्टेंस भी आ रही है। जैसे अब देखें खवातीन के हवाले से राइट्स उनको काफ़ी हद तक मिलना शुरू हो गए हैं, थोड़ी आज़ादी भी आ रही है। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स भी कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो तालीम में एक्सेल कर रहे हैं, किसी न किसी अच्छे ओहदे पर भी एक दो पहुंचे नजर आ रहे। जैसे एक डॉक्टर पिछले दिनों मैंने देखा कि शी ट्रांसजेंडर, एक वकील थी वो भी ट्रांसजेंडर होकर भी वकील बने। तो ये बड़ी हमारे लिए अचंभे की बात जरूर है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद माशाल्लाह वो एक जगह पहुंचे क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एफर्ट की और लोगों ने उनका साथ भी दिया। जाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें एग्जैक्टली ये एग्जाम्पलरी चीजें हैं जो कि इनको प्रोमिनेंट करना चाहिए और उन लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। लेकिन उसमें फिर से कहूंगा कि हिम्मत ना हारने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। अगर जैसे आपने कहा कि बार बार एक दरवाजे पे दस्तक देते रहे तो कभी तो खुल ही जाएगा ना। तो डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट जी। के साथ ही टाइम हुआ एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का और हाजिर होते हैं म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

स्तन को मटकी की तरह बना लो और इसमें अपने गुरु की, अपने पीर की जो तालीमात हैं, जो ज्ञान है, उनको खुद के अंदर रचा लो, समो लो।

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और जायदाद तकसीम हुई तो मैं सिर्फ देखती रह गई। औरत होने की वजह से मेरे भाइयों ने मुझे मेरे हक से महरूम रखा और मुझे खामोश करा दिया गया। जायदाद में हिस्सा हर औरत का शरई और कानूनी हक है, मगर मेरे समेत कई खवातीन इस हक से महरूम रखी जाती हैं। मैंने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए पर सालों बाद भी कुछ हासिल ना हुआ, मगर वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुझे मेरा हक मिल गया। जायदाद में हिस्सा हर औरत का हक है।
2: आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 23 के तहत हर शहरी मर्द या औरत को हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जायदाद हासिल कर सकते हैं। विमेन प्रॉपर्टी एक्ट का निफाज इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका है, जिसके जरिए कोई भी औरत जो किसी भी तरह अपनी जायदाद या मलकियत से महरूम है तो वो अपनी शिकायत मोहतसब के पास जमा करवा सकती हैं। इसके अलावा तकसीम गैर मनकूला जायदाद एक्ट पंजाब 2012 के तहत खवातीन शराकत दारों की इजाजत के बगैर किसी मुश्तरका जायदाद को तकसीम नहीं किया जा सकता। तहफ्फुज खवातीन एक्ट 2011 के निफाज के बाद किसी भी औरत को विरासती जायदाद से महरूम रखने की सजा 5 से 10 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कानून जानिए, अपना हक पहचानिए। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबिता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: टीवी की दुनिया।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोज़े सामईन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद करार हैदर। आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आते हैं जिनका हमारी फैकल्टी यानी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक होता है और ये 7 डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल। मैं इब्तदाई में बता चुका हूँ पहले प्रोग्राम में। आज हमारे साथ जो डिपार्टमेंट मौजूद है वो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। उसके तहत एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको कहते हैं MLT। उस प्रोग्राम के बारे में हम आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमानान मौजूद हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर सबा कबीर को, मैम खुशामदीद, और उनके साथ मौजूद हैं मिस इकरा जमील।
4: थैंक यू सर।
3: जी मौजूद सामीन, बगैर किसी वक्त ज़ाया किए मैं बढ़ूँगा डॉक्टर सबा कबीर की तरफ। उनसे इस्तदा करूँगा कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताएँ।
5: Thank you so much sir for inviting me to this show. I am Dr. Sabah Kabir and meri jo PhD hai wo microbiology and molecular genetics mein hai from the University of the Central Punjab, the Department Institute of Microbiology and Molecular Genetics. Actually my research interest lies in the infectious diseases with the main focus on the multi-drug resistance of the microorganisms. And I'm also a certified trainer of the biosafety and the biosecurity. And I'm working here in the UCP as assistant professor microbiology.
3: आपने कब UCP join किया था as a teacher?
5: Back in 2019 September में.
3: Right. So अब मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ूंगा। Miss Ikra Jameel, अपने बारे में कुछ बताइए।
4: Thank you sir. Myself Ikra Jameel and I'm working as a lecturer in the department of microbiology and I joined UCP back in October 2022. I am basically bachelor's in medical lab technology with a master's in medical lab sciences from University of Health Sciences and now I am PhD microbiology scholar from Government College University Lahore and I have more than 7 years of teaching experience in medical lab technology program.
3: बहुत खूब। मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा मतलब डॉक्टर सबा कबीर से है, कि आपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताइए।
5: जी सर, सबसे पहले तो MLT है क्या? MLT इज़ बेसिकली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो वी हैव ए वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, मोर देन 11 टीचर्स आर PhD होल्डर्स, जिनमें हमारे HOD हैं डॉक्टर आतिफ अमीन, हिज एक्सपर्टीज आर इन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो मेजर उनका फोकस है, ही इज़ वर्किंग ऑन द हैवी मेटल रेजिस्टेंस एंड जीनोमिक ट्रांसक्रिप्टियोमिक एंड प्रोटियोमिक लेवल्स। हमारे पास डॉक्टर मदीहा खान हैं जो कि प्रोबायोटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं। डॉक्टर समन इकराम हैं, वो उनका काम माइक्रोबियल बायोफिल्म्स एंड जीन एक्सप्रेशंस पर है। डॉक्टर नमना अनवर हैं जो कि कैंसर बायोलॉजी पे काम कर रही हैं। डॉक्टर मोहसिन तसव्वुर माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन गुलजार हैं हमारे साथ जो कि बायोरेमिडिएशन एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर नाइला हैं, अगेन शी इज़ वर्किंग ऑन द कैंसर बायोलॉजी, और मिस इकरा जमील हैं जिनका काम मोलेकुलर मैकेनिज्म्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर ताहिर इसहाक हैं जो कि फूड माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रहे हैं।
3: जी आपने बड़ा तफसीली तारुफ करवाया। अब मैं मिस इकरा जमील से गुजारिश करूँगा कि अपने शोबे के बारे में बताएं।
4: सर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली एन अलाइड हेल्थ प्रोफेशन, जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे फिजिकल थेरेपी है, जैसे इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो अब व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो ये एक्चुअली द बैकबोन ऑफ मेडिकल फील्ड। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेंड करते हैं टू वर्क एज अ प्रोफेशनल्स इन द लैब्स एंड टू बी अ पैथोलॉजिस्ट और टू बी अ टेक्नोलॉजिस्ट, जिसमें हम पेशेंट्स के सैंपल्स को डायग्नोज करते हैं, जिनमें हम पेशेंट्स के सैंपल्स के टेस्ट परफॉर्म करके उन्हें डायग्नोसिस तक लेके जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट प्लान्स को फाइनल करते हैं। तो विदाउट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इट विल क्वाइट बी इम्पॉसिबल फॉर द डॉक्टर टू रीच टू द एग्जैक्ट डायग्नोसिस। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इट सेल्फ जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, नॉट ऑन द नेशनल लेवल बट ऑल्सो एज इंटरनेशनली इन गल्फ स्टेट्स। तो इसलिए इसका जो स्कोप है, इसके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, एक्रेडिटेशंस हैं, एक बहुत शानदार किस्म का करियर रीच है इसके अंदर। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कि हमारे पास जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं अप टू PhD लेवल, वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं।
3: बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा कबीर, आप बताइएगा कि अपने स्टूडेंट्स की इस्तेदाद को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में क्या ऐसे तरीक़ाकार अपनाते हैं जिनसे स्टूडेंट्स अपडेट होते रहें और जदीद तहकीकात से भी उनका रब्ता रहे।
5: सर, इसमें एक तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों की जो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, हम सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स अरेंज करवाते हैं, जो भी हमारे करंट टॉपिक्स हैं या जो भी हमारी करंट प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर उनको अप टू डेट रखना। देन उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स मौजूद हैं जिसमें हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चों को हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा हम उनको डिफरेंट मीन फॉर द एक्सपीरियंस थ्रू द रियल वर्ल्ड, हम उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में लेकर जाते हैं, डिफरेंट डायग्नोस्टिक लैब्स में लेकर जाते हैं वहाँ पे, ताकि वो एक्चुअली किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से वो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, वो उस पर काम कर सकें। फिर उनके डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। तो ये एक सारी चीज़ें जो बच्चों को थ्रू आउट द सेमेस्टर, बच्चों की ये एक्टिविटीज़ हमारे पास चल रही होती हैं। और इसके अलावा बच्चों को इन क्लास भी हम जो भी एक्टिविटीज़, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग करवाई जाती है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं असाइनमेंट्स की फॉर्म में, डिस्कशंस की फॉर्म में या क्लास एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, ताकि बच्चे जो हैं वो अप टू डेट नॉलेज रहे और वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी उनकी इन्हांस हो सके।
3: बहुत शुक्रिया मिस एकरा जमील, आप मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOUs भी साइन कर रखे हैं जिसकी बुनियाद पर आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि दुनिया में आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है?
4: जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हमारी जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इट इज़ एक्रेडिटेड विद द एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, जो कि एक सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे एलाइड को लेके चल रही है। देन वी हैव MOUs फॉर डिफरेंट लैब्स, जिसमें हमारे पास आ जाती है हेल्थ रिच लैब्स आ जाती हैं, हार्मोन लैब है, एंड इनके थ्रू हमारे जो हैं वो गैलेक्सी लैब्स के साथ हमारा एक MOU साइन है। देन वी ऑल्सो साइन एन MOU विद द मखदूम डायग्नोस्टिक्स, एंड इन सारी चीज़ों का बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ड्यूरिंग सेमेस्टर जो हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट लैब्स में विजिट करते हैं, एंड इन देयर फाइनल सेमेस्टर दे डू इंटर्नशिप्स देयर। इट वुड बी फॉर द 6 month और फॉर अ होल ईयर, एंड इट कुड बी ऑन द स्मॉलर बेस पीरियड लाइक 3 months के लिए, 2 months के लिए। तो इससे उनकी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं, दे नो द एक्चुअल लर्निंग स्किल्स एंड दे utilize that MOUs to be a professional in their actual field.
3: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा कबीर, आप बताइएगा कि क्या आप invited speakers भी बुलाते हैं अपने बच्चों की स्किल्स को, अपने बच्चों की नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को इनहांस करने
5: के लिए? बिल्कुल सर, हमारे पास जो इनवाइटेड स्पीकर्स होते हैं वो हम नेशनली एंड इंटरनेशनली दोनों तरह से हमारे पास इनवाइटेड होते हैं। हम इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ भी बच्चों के इवन हम एक हमारी सीरीज़ अभी लेटेस्टली हम लोगों ने स्टार्ट की है कि हम जो इंटरनेशनल स्पीकर्स होती हैं उनको हम अपने एज अ गेस्ट लेक्चर्स के तौर पर हम उनको बुलाते हैं ताकि वो लेक्चर्स बच्चों को डिलीवर करें। और फिर नेशनल में हमारे पास जो भी रिनाउंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको हम डिफरेंट सेमिनार्स में बुलाते हैं या इवन उनके साथ लेक्चर्स अरेंज करवाते हैं ताकि वो बच्चों को थोड़ा सा अप टू डेट रखें।
3: जी आप कुछ मज़ीद कहना चाहेंगी?
4: सर बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमारे टॉपिक पे डिपेंड करता है कि हम किस करंट इशू को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने फील्ड के जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं एट द प्रोफेसर लेवल, दे आर वेल नॉट साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं अपनी फील्ड में, एकेडेमिया में एज वेल एज प्रोफेशनली लैब्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें जो है एज अ गेस्ट स्पीकर इन्वाइट करते हैं।
3: बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं एक वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइएगा। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: National Point 6. नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी।
6: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را، اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است، بشنوید جهان UCP.
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6।